0: लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
1: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी, उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
0: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
1: जब पॉल्यूशन
0: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
1: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगी इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
0: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते,
1: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी, तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व तो है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
0: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
1: आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बन रहे हैं, बनके पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं। आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
0: आई अग्री विद यू मैम, आई अग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड What are your top three priorities? Things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy? कि ये तीन चीजें आपने बदली अपने समय पर जो आप करना चाहती हैं पर्सनली.
1: मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट
0: नंबर वन
1: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था. आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
0: जी.
1: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का. पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है. पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो. ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है. और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया.

0: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11th 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IIST में admission मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे aircraft से spacecraft तक का जो innovation है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव ही पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट्स, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
0: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

0: Thank you for staying with India Today. I'm Suesha Samant. And well, the probe has intensified in the Ram Mandir donation theft row. More details on accused Anukalp Mishra has emerged during the SIT probe. While accused Avinash Shukla has made more revelations during the probe, security measures have been beefed up at the temple premises. In a major exclusive revelation accessed by India Today, it is learned that an entry pass was issued in Anukalp Mishra's name for the Ram Mandir, designating him as an arrangement worker. It is alleged that an entry pass was issued in Anukalp Mishra's name for every special event that happened at the temple. It is also revealed that Anukalp Mishra purchased a car in the same year, that is 2025, after becoming associated with the temple. Now, according to sources, Avinash Shukla, accused in the Ram Temple donation theft case, is suspected to have hidden a large amount of cash. There are also apprehensions that gold and silver ornaments may be part of the stolen items. Cops repeatedly gathered this information during interrogation and from evidence collected during probe. The highest recovery that has been made is 20.39 lakh rupees that was made from Avinash. Foreign currency, including US dollars, was also recovered from him. The meeting of the trust scheduled for July 6 now holds significance. According to sources, show cause notices will be issued to General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Both office bearers will be asked to provide written and oral explanations.
1: Paisa ka gaman hua hai. जबरदस्त गबन हुआ है मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर
2: इस मामले में
1: इसी मामले में और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा कुछ तो है नहीं लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है गोपाल राव भी है ये सब जितने हैं ये हाँ अनिल मिश्रा हैं तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए जेल नहीं जा पा रहे हैं हो सकता आगे जाए अभी
0: Our skeletons tumble out of the closet in this case. In an exclusive conversation, India Today spoke to Shivang Tripathi, a former outsourced employee of Ram Temple Trust, who made some shocking revelations. Shivang claimed that there were only two ways to secure a job as an outsourced employee at the Ram Mandir, either by having a personal connection with an office bearer or by paying a bribe of 20,000 to 30,000 rupees to a private company involved. Shivang has also said that people were often seen walking away with money from the area where counting of donations took place.
3: सुनिए ना अभी शिवांग आपने कई किस खबरें सुनी होंगी कि चंदा चोरी की बात सुनी होगी आप जहां काउंटिंग होती है वहां का कुछ आपने देखा है उस तरफ कुछ इस तरह का होता हुआ कभी
4: जी महोदय जी हम ये देख रहे थे जब वहां हम स्टाफ लॉकर में भी ड्यूटी किए हैं महोदय जी कैमरा वहाँ कैमरा भी चलता था और बगल में एसआईएस गार्ड मतलब गेट के बाहर बैठता था उसका कोई चलती नहीं था टोटल अगर एसआईएस गार्ड कहता कि साहब चेक कराइए तो कोई चेक नहीं कराता था वहाँ के धुरंधर ने भी धुरंधर थे उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ पे गुंडई की है और अगर रोक मोबाइल स्टाफ लॉकर में रखने के लिए मोबाइल और जैसे पॉकेट मनी वगैरह हो गया तो ये लोग सब लेकर जाते थे केवल वहां पे जो शोषित किया गया जो जैसे कर्मचारी एसआईएस हो गया बीबीजी हो गया पीएसपी सिक्योरिटी हो गया इन लोगों को शोषित किया गया शोषण किया गया वहां पे
3: नहीं मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो चोरी वहां से हुई है कैश की या ज्वेलरी की जो चढ़ावा राम जी को चढ़ा वहां पर उस तरह का कुछ आपने देखा वहां पर अंदर
4: महोदय जी वहां से हम देख रहे थे जैसे गाड़ी पे लद के जा रहा था वहाँ के कुछ कर्मचारी दो तीन कर्मचारी गाड़ी पर लेकर जा रहे थे
3: गाड़ी कैश कैश कैश ज्वेलरी क्या
4: जी
3: कैश था ज्वेलरी था क्या था
4: यहाँ वहाँ पर कैश भी कैश है वहाँ कैश का ही केवल वहाँ मायने गिना जाता था स्टाफ पीएफपी
3: मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने डोनेशन जहाँ काउंटिंग होती है वहां से कुछ लोगों को कैश ले जाते हुए देखा
4: वहां हमने गिनते हुए देख, मतलब वहां पर गिनती होता था, उसी बगल में हम ड्यूटी कर रहे थे।
3: ठीक है।
4: हम वहां पर देखे और सामने, हमारे सामने था एक SIS गार्ड।
3: ठीक है।
4: महोदय जी, SIS गार्ड का मतलब केवल वही था, एंट्री कर रहा था बस, उसके आगे उसका कोई क्रिया नहीं था। केवल एंट्री, कितने लोग आए कितने लोग गए, वो आपका रजिस्ट्रेशन ही हो गया, आपका हाजिरी। अदरवाइज अगर SIS गार्ड अगर कुछ करना चाहे तो कुछ कर ही नहीं सकता ट्रस्ट
3: मतलब
4: के
3: आपका कहना
4: चलते।
3: है कि काउंटिंग वाला जहां सेंटर था वहां पर कोई भी आ रहा था जो मंदिर से जुड़ा था, ये कहने का मतलब है? मतलब
4: ये वहां पर
3: गड़बड़ी
4: कोई
3: जो
4: कोई कर्मचारी आ जाता, उसे कोई रोकने वाला नहीं था।
3: बात चल रही है ना पैसा पार करने वाली और घरों पे
4: जी
3: पैसे मिले हैं लोगों के, ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प और जो
4: जी
3: विनय, इन सबसे कहीं मुलाकात हुई आपकी अंदर?
4: जी नहीं, मुलाकात हुई है लेकिन ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा था महोदय जी।
3: हाँ
4: काफी अच्छे ताल्लुक थे इन लोगों का, मतलब लेकिन ऐसा देखने में नहीं लगा कि ये लोग मतलब चोर हैं, बाकी प्रभु की
3: किन्नू,
4: माया
3: आप
4: जो।
3: लोगों ने इतने लंबे समय तक वहां काम किया है, अभी इस तरह की बात सामने आई आप लोगों के अंदर खाने में कि जो है कहीं घपला चल रहा है, पैसे कोई चुरा रहा है वहां पर, इस तरह की बात?
4: महोदय जी, जब हमारी गाड़ी 28 दिसंबर को गायब हुई थी 2025 को, तभी
3: हाँ
4: हमें लगा कि कैमरा खराब। हमने कई बार एप्लीकेशन थाने पर भी एप्लीकेशन दिया है, और माननीय चंपत राव जी का मैंने पैर भी पकड़ा है। मैंने कहा आप कलयुग के राम है, कलयुग के हनुमान है, प्रभु हमारा कुछ कल्याण करिए, गरीब आदमी है, लाकर सेवा में ड्यूटी कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, इस ताल्लुक से बात किए हैं। मैं ब्राह्मण होकर उनका पैर पकड़ा, उनका सत्यानाश होना निश्चित
3: नहीं, आपकी गाड़ी कहां से चोरी हुई?
4: है। ये बैरियर, डी बैरियर जो डी पॉइंट जो बैरियर लगा है, पुलिस के सामने जस्ट गाड़ी हमने खड़ा किया, वो गाड़ी गायब हो गई। येलो जोन और रेड जोन का कैमरा दोनों ही खराब
3: मतलब राम मंदिर के पास से ही गाड़ी गायब हो गई और वहां कैमरा नहीं चल रहा था?
4: है जी, अब तक कोई पता ही नहीं लगा। हम एप्लीकेशन दिए, थाने पर गए तो हमसे कह रहे हैं कि जब ट्रस्ट में बात किए तो कह रहे हैं RC है, वो है। हम भाई गरीब आदमी, हम इंश्योरेंस उसका एक्सपायर हो गया, RC RC है हमारे पास, और लेकिन उसका कोई कार्रवाई हुआ नहीं ना। उसका कोई कंपनी से बात किया तो कंपनी ने कहा ट्रस्ट जाने, ट्रस्ट ने कहा कि कंपनी जाने।
3: अनिल मिश्रा का कितना इन्वॉल्वमेंट था अंदर मंदिर की चीजों में, खासकर जहां काउंटिंग वगैरह होती थी?
4: दो तीन तीन ही लोगों का चलता था, तीन चार लोगों का पूरे मंदिर में।
3: किसका किसका?
4: चंपत राय, अनिल मिश्रा जी और गोपाल गोपाल राव, और उसके बाद टिन्नू यादव,
3: अच्छा,
4: इन्होंने
3: मतलब
4: अपने
3: तीन।
4: निर्माण में दी है। महोदय
3: आपको क्या लगता है जो 8 लोगों को पकड़ा गया है वही लोग हैं, और भी बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं?
4: तो अभी तो सुन, समझ में हमारे ये आ रहा, अभी छोटी मछलियां केवल जाल में आई है, अभी तो बड़ी मछलियां हैं समुद्र में, उन्हें तो भी पकड़ना बाकी
3: आप
4: है।
0: India Today also spoke exclusively to Scenic Security Firm Director Gaurav and the Area Manager of Scenic Security Firm, who was present during the onboarding of Ayodhya staff. They revealed that the trust was fully involved in staff recruitment process and that the trust provided staff list to the bank. The bank passed it on to them, and it was their firm which placed the staff on payroll.
5: हम ये जानना
4: जी
5: चाहते थे कि जो इन लोगों का प्रोफाइल आया, आपने सेलेक्ट किया इनको, तो ये आप तक कैसे पहुंचे, आप इन लोगों तक कैसे पहुंचे?
6: इन लोग, हमारा स्टेट बैंक जैसे कॉरपोरेट लेवल पे हमारा स्टेट बैंक का अनुबंध है हाउसकीपिंग का, ठीक है, हाउसकीपिंग स्टाफ का। तो हाउसकीपिंग स्टाफ हमने स्टेट बैंक में दिया हुआ है, स्टेट बैंक, और जो सिक्योरिटी का काम है वो SIS का है। तो ये हाउसकीपिंग जैसे बैंक में होते हैं, तो बैंक का ट्रस्ट के साथ टाई अप है, बैंक
5: वो मैं समझ गया।
6: का। हाँ, तो हमारा टाइप बैंक से, तो हमने बैंक को स्टाफ दिया, ये बैंक ट्रस्ट के साथ वो अपना क्या गिनती करना, ये करना, वो उस काम में उनको लगाएंगे।
5: ये जो स्टाफ का सिलेक्शन हुआ, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे हुआ? ये लोग, इन लोगों ने आपको अप्रोच
6: ये स्टाफ
5: किया?
6: का, ये वो मंदिर से ही लिस्ट मिली थी कि ये हमारे आदमी, उन्होंने बैंक को दिया, बैंक ने हमको दिया कि इनको इनको आप अपने उस पे रख लीजिए पेरोल पे।
5: तो ये ट्रस्ट की तरफ से आया था ये इनका नाम?
6: ट्रस्ट की तरफ से बैंक नहीं, ट्रस्ट की तरफ से बैंक को, और बैंक की तरफ से हमको,
5: तो
6: ट्रस्ट ने
5: वो
6: मुझे डायरेक्ट मिल लिया। जी
5: आपके पास कोई उसका मेल ट्रेल या कोई कम्युनिकेशन का ट्रेल होगा ना आपके पास,
6: हाँ,
5: तो वो आप भेज सकते हैं आज तक को?
6: नहीं, वो जो भी चीजें वो SIT को दे दी गई हैं।
5: आपने दिया है SIT को?
6: जी जी जी जी।
5: तो वो मेल
0: And well, probe agencies have recovered a total of 14.25 lakh rupees in cash from Lovekush's house and other belongings. According to police sources, Lovekush had hidden the money from the theft in a cupboard at his home and beneath a heap of cow dung and dry fodder. India Today also spoke to family members of Lovekush Mishra and confronted them on the allegations. We're getting you this exclusive report.
7: We are reporting from Lovekush residence, one of the accused in this entire case, from whose residence 14.25 lakh rupees, some dollars, some jewelry have been recovered. Not just that, some registry papers have also been recovered. And when police team reached at this particular place, they raided the entire house, firstly from inside and then from outside. Even these particular areas where you can see the belongings of the villages are placed right over there. They were also the part of the raid, and as per the sources, we saw visuals and pictures of police in a way raiding and in a way looking after these particular visuals as well, and in going inside that particular area and finding out whether the cash is being stored there. And as per the sources, some amount of cash was also recovered from that place also. This is that particular residence where Lovekush used to stay along with his wife, mother and father. Though we tried to spoke to the family members, they are quite angry over this particular update. They say that Lovekush has nothing to do with this particular Chanda Chori. Till 5 PM, police has the custody of Avinash and they'll be roaming around to the place for the recovery with the help of Avinash. Now it's going to be worth seeing the ADA notice which has been handed over to the Supriya, the wife of Lovekush, when the bulldozer action will begin in that particular process. A 7 days time has been given. So we can expect some big action amid the big meeting of VHP and Ram Janmabhoomi Trust on July 6th, which will clear the fortunes of Champat Rai, Gopal Rai and Anil Mishra. With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastav for India Today. Aapke bete par aarop lag raha hai ki ghar mein dollar tak chupa ke rakha hua hai. आप ये चीज कहेंगी तभी तो बात आगे होगी. मतलब आप खुद समझिए ना, लोग गलत समझ रहे हैं अगर ऐसा है तो. अगर कुछ मिला ही नहीं है, मैं आपके केवल 2 मिनट लूंगा, तुरंत यहां से चला जाऊंगा. हाँ, मैं यही चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ मैडम. हाँ, बस पर बात 2 मिनट कर लीजिए हमसे खाली. पुलिस बहुत कुछ आरोप लगा रही है, कह रही है काफी कुछ इसी घर के आसपास से मिला है.
8: जो मिला हो, जो लगा हो, जाने जहाँ से, या हम लोगों को सबूत दे या कोई रिकॉर्ड दे उसका. जैसे आप कहते हैं ले गए हैं, तो आप हमको रिपोर्ट कुछ रिपीट दिए हैं? कोई ग्राम प्रधान को बुलाकर उनके सामने आपने कहा है कि ये इनके घर से निकल रहा है?
7: पुलिस ने असल में ना FIR में ये सब चीजें लिखी हुई हैं.
8: FIR कुछ भी हम नहीं है, कुछ भी आप लिखिए.
7: तो आप नहीं थे जब ये हुआ?
8: हम यात्रा में थे, हम उस समय यहाँ नहीं थे.
7: बताया गया सामने जो कंडे रखे हैं वहां से कैश मिला
8: 10 लाख रुपए, उनको निकाल लिए जाएंगे. घर के अंदर जगह है नहीं रखने की.
7: एक बार दिखाएंगे ना वहाँ पे क्या निकल सकते हैं कैश?
8: बिल्कुल निकाल घिन लीजिए.
7: आपको लगता है कि वहीं से मिला है?
8: हमको क्या लगता है उसमें, हम जब जानते ही नहीं है, हम जब जानते नहीं कैश मिला कहाँ से है वो.
7: पुलिस ये भी कह रही है कि घर जो है आपका ना, वहाँ अंदर कुछ अलमारियां हैं.
8: हाँ.
7: वहाँ से रजिस्ट्री के कागज भी मिले हैं.
8: रजिस्ट्री कागज तो परसों ले गए हैं. परसों कौन सा धन मिल गया, किसने कहाँ तलाशी हुई, कौन प्रधान था, कौन कहाँ, यहाँ के कौन अधिकारी थे, किसने ले गए? ले गए तो ले गए, उसके हमको पता है कि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ से कै पैसे कहाँ से ले गए.
0: And we'll now get you details of the irregularities in VIP.

0: लंबी सांस ले।
1: नॉट एवरी हीरो वेयर्स अ केप। सम कैरी अ रेड अम्ब्रेला, सम डोंट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड। दिस वीक बॉलीवुड इज इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ इट्स मोस्ट अनकन्वेंशनल प्रोटैगनिस्ट्स येट। अ डेफ एंड म्यूट वुमन लिविंग अ डबल लाइफ, हाइडिंग डेडली सीक्रेट्स बीनीथ एन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस।
2: नाम बच्ची।
1: Directed by Nachiket Samant, Baby Do Die Do, starring Huma Qureshi, promises a mix of action, mystery and psychological drama. The film introduces Huma as Baby, a seemingly ordinary NGO worker who secretly leads a double life as an assassin. Despite being deaf and mute, Baby is shown navigating dangerous missions while being haunted by the voice of her deceased sister. Huma steps into one of the most unconventional roles of her career.
3: Wo bhag gayi, wapas nahi aayegi.
4: Tum log ke antim sanskar ke liye to aayegi.
1: Playing what is being billed as India's first desi hit woman on screen. A character who speaks without words and lets her actions do all the talking.
5: और मेरा छाता भी देकर आओ।
6: कमिंग टू योर अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू।
2: डाई डू
6: बेबी डू और डाई?
2: नो, इट्स डू डाई डू। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ यू डू देन यू डाई बट देन यू कीप डूइंग, सो इट्स लाइक एन एंथम। एंड देन द डायरेक्टर वांटेड टू मेक दिस अ मराठी कैरेक्टर, सो बेबी करमरकर इज हर नेम। सो करमरकर इज अ वेरी पॉपुलर मराठी सर नेम, बट एंड व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इज डू डाई डू।
7: कर दी मैं भी लोन ली थी सब में वन एंड ओनली। Claustrophobia sa maine full and final friendship up kar diye kyunki kar diye.
1: The film also marks a new milestone for Huma, who makes her debut as a producer. Wow. Alongside brother and actor Saqib Saleem under their banner Saleem Siblings.
8: Kare paisa paisa 15 minute fame ka game sab lame hai lame.
1: Baby Do Die Do isn't just releasing in theaters, it's walking straight into one of the biggest box office battles of the year.

बेटा आप भी 2 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हैं और नींद नहीं आ रही है. एक और वीडियो देख लीजिए शायद आ जाए. How ironic. But let me show you a trick today that will knock you out in a few minutes. At least that's what the claim is. It's called cognitive shuffling. For this video, we've spoken with Dr. Sanjay Chugh, senior psychiatrist based in Delhi. So ये है क्या? आपको क्या करना है? You have to pick a random word, say time. And now think of words starting from T, like train, tulip, टेलीस्कोप. कुछ भी जो दिमाग में आए, जब टी के सारे शब्द खत्म हो जाए तो आप टाइम के सेकंड लेटर पर आइए. आई, आइसक्रीम. मे बी आइसक्रीम के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है, रात को मतलब क्रेविंग होगी, सो अवॉइड दैट. बट मे बी आइस, अदर थिंग्स, राइट? देन मूव टू एम, देन मूव टू ई. कीप डूइंग दिस एंड बिफोर यू नो यू वुड हैव ड्रिफ्टेड ऑफ. तो होता क्या है, दैट्स दिस फिनोमेना कॉल्ड हिप्नागोगिया, विच इज लाइक गेटिंग टू द बाउंड्री बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप. एंड दैट्स द आइडिया, दैट हाउ डू यू हिट दैट लाइन व्हेन योर माइंड स्टॉप्स बीइंग अवेक एंड गोज इनटू द स्लीप मोड. इसके बारे में बात करी थी कनेडियन रिसर्चर लुक पी बोडो ने. एंड द एंटायर थ्योरी बिहाइंड इट इज ग्राउंडेड इन रियल स्लीप साइंस. एंड इट टॉक्स अबाउट दैट हाउ योर ब्रेन ट्रांजिशंस फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप. इट नेचुरली स्टार्ट्स जनरेटिंग लूज random disconnected images, also called micro dreams. Random unconnected words like a bicycle, a cloud, or a car, or a train keeps your brain just busy enough to stop the anxiety spiral, but not busy enough for you to stay awake. That low drifting attention is actually a biological cue that it's time to sleep. What matters to you is this: anything that breaks the cycle of anxiousness or repetitive thinking also at bedtime, that helps you sleep. For some people it's just counting backwards, for others it could be playing this word game. So ho sakta hai ki aapke liye na kaam kare, but that's when you really need to see a doctor. But cognitive shuffling, remember, is harmless. It is free and it requires nothing but your own imagination. Aur agar aap back to basics jaye to best sleep hygiene kya hota hai, it is still the boring stuff: consistent bedtime, less screen time, a cool dark room. Cognitive shuffling might help you get there, but it's not a replacement, remember, for those basics. And maybe stop scrolling at 2 AM. That's probably the real hack. Hamari reels bhi dekhni hai to bhaiya subah mat dekho, din ke samay travel karte hue dekh lo, it'll actually help. So stay subscribed for more.

0: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: Pay attention. From afar, it felt so true. A famous face giving advice with a smile. But looking closer, I saw I was being trapped by a fake video slide.
2: Message.
1: SEBI and NSE advice. In any video, focus on slow eyelashes and faulty lip sync. Believe and trust only on authorized sources. Wah!
3: Samajhkar, investkar.
4: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी.
5: No hacks, no drama. Just the real Korean ritual. In every bottle of Aquajay. Infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.
6: We are over, Jimmy.
7: Hey! Life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
10: सोच बदलो और बैंक भी.
11: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी. फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन, दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव. फास्ट, शार्प, अनफिल्टर्ड, फॉर द फैंस हू वांट एवरी अपडेट, एवरी स्टोरी, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: अब स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: No hacks, no drama, just the real Korean ritual in every bottle of Aquajay, infused with Jeju grown botanicals and powered by K Beauty Science. Aquajay, now in India.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
2: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
3: Well said.
2: SEBI and NSE advice, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI ID.
4: So much good. Invest good.
5: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी.
6: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है.
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें.
6: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील.
8: वी आर ओवर जिमी.
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.